यह आकाशवाणी एडलाइड ऑस्ट्रेलिया है। हम 103.1 एफएम पर बोल रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड 5ebi.com.au पर आज आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ डी के कुलश्रेष्ठ। हमेशा की तरह लीजिए प्रस्तुत है एक भारतीय वाद्य संगीत।

जैसा आप सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह की चालों को समझ

अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की एक कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात रील देखने वाली माँ का बच्चा रील नहीं बना सकता है? अगर मेरी माँ ने कभी प्रहलाद की भक्ति कथा सुनी होती, कभी रामायण की चौपाइयाँ धुनी होती, कभी ओम जय जगदीश हरि गाया होता, कभी श्रीमद् भगवत गीता को हाथ लगाया होता, तब तो मैं राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के आपके घर में आया होता। मेरी माँ ने तो 2400 घंटे सोशल मीडिया का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी माँ ने बेटे को नहीं इंस्टा को जन्म दिया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ही बताएं, कितने घरों में रामायण है, गीता है, कुरान है, कितने घरों में आरती है, भजन है, भगवान है, कितने घरों में घिसा जाता मलयागिरी चंदन है, कितने घरों में पूजा है, पाठ है, संध्या वंदन है, आखिर इनके अभाव में क्या हो पाएगा? आज का जन्म लेने वाला बच्चा गाना नहीं तो क्या गीता के श्लोक सुनाएगा? इसलिए अनुरोध है आज की माताओं से, पिताओं से, दुल्हन बनने वाली देश की बालाओं से, कि अपने अंदर पलने वाली सोशल मीडिया की संस्कृति को मार दें, YouTube, इंस्टा, फेसबुक से बचाकर अपने बच्चे को माँ वाला प्यार दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जब अंतिम सांस लेंगी और आपका बेटा आपको गंगा घाट लेके जाएगा, तो सबसे पहले सेल्फी लेगा, फिर मुखाग्नि देगा, फिर रील बनाएगा। अगर आप चाहती हैं ऐसा ना हो, अगर आप चाहती हैं ऐसा ना हो, तो आपको पता होना चाहिए किसे, कब, कितना वक्त दिया जाना चाहिए सकता है।

मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले। और ये शेर सुने खास तौर से शैलेश जी, आप सुने कि अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, अपने भरपूर

मंच पे भी हम सभी को चाय नहीं मिली। चाय वाले भैया जहाँ कहीं भी, मैं उनको निवेदित करती हूँ, दौर नफरत का है तू चाय की उम्मीद न कर, दौर नफरत का है तू चाय की उम्मीद न कर। लोग बैठे हैं यहाँ जहर पिलाने वाले, लोग बैठे हैं यहाँ जहर पिलाने वाले, और आज एहसान परामोश बने फिरते हैं।

0: बहुत अच्छा से
1: लौट कर फिर नहीं आएंगे ये जाने वाले। और एक सच्चा शेर पढ़ती हूँ कि बड़े कमजोर है वो सच की कसम खाते।

0: मुसीबत में साथ कहां से आए, त्योहार हो गए दिखावे के तो मन में उल्लास कहां से आए, कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आए, रोटी हो गई ब्रेड की ताकत कहां से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहां से आए, चेहरा हो गया मेकअप का तो सौंदर्य कहां से आए, इंसान हो गए पैसों के तो प्यार कहां से आए, हंसी हो गई इमोजी की तो दिल की खुशी कहां से आए, दोस्ती हो गई सोशल मीडिया की तो मुसीबत में साथ कहां से आए, त्योहार हो गए दिखावे के तो मन में उल्लास कहां से आए।
1: तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। और चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, मगर कड़कड़ाटी ठंड में भी धोती लपेटे बैठा हूं। और मैं तो बता रहा हूं सर, दुनिया में 7 प्रकार के पति पाए जाते हैं। पहला वो जो रात को जल्दी सो जाता है उसे सैया कहते हैं। दूसरा वो जो रात को पीकर आता है उसे पिया कहते हैं। तीसरा वो जो पत्नी के बेलन से मार खाता है उसे बलमा कहते हैं। चौथा वो जिसकी आंखें सदा नम रहती है उसे सनम कहते हैं। पांचवा वो जिसको पत्नी रोज सजा देती है उसे साजन कहते हैं। छठवा वो जो जिसकी मजबूरी में हंस हंस के बैंड बज जाती है उसे हस्बैंड कहते हैं, हमारे भाई साहब की तरह। और सातवा वो जो इन सब का कॉम्बो होता है उसे रसिक गुप्ता जी कहते हैं।
2: क्या बात है, वाह वाह।
1: नहीं, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। अच्छा भाई साहब, आप लोग पति के 7 प्रकार जान लिए, पत्नी भी 7 प्रकार की होती है। एक बार तालियां इस बात पर बजाइए, फिर मैं बताता हूं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़कर केवल टीवी में घुसी रहती है उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो पति के जो आपके पैसों पर वाइपर, जो आपके पैसों को वाइपर की तरह साफ कर दे उसे वाइफ कहते हैं। तालियां कमजोर है आप लोगों को। तीसरी वो जो आपके साथ 24 घंटे आधे अंग की तरह आप पर निगरानी रखती है उसे अर्धांगिनी कहते हैं। चौथा वो जो आपको बिना गम के रहने ही नहीं देती उसे बेगम कहते हैं। पांचवी वो जो आपके भाग्य पे दिन रात बाण चलाती उसे भाग्यवान कहते हैं। पांचवी वो जो दिन रात आपके भाग्य पे बाण चलाती है उसे भाग्यवान कहते हैं। और छठवी वो जो जो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे उसे श्रीमती कहते हैं। तो यहां पर आए हुए तमाम अपनी मति को कुमति में बदलकर अपनी श्रीमती के साथ आए हुए प्रत्येक पति को मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन जितनी मजबूरी में आप मुस्कुरा रहे हैं, पता चल रहा है आपकी शादी हो गई है। देखिए, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई संपत्ति के लिए लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो निस्वार्थ भाव से लड़ती, जिसका नाम होता है पत्नी। दादा रसिक गुप्ता जी ने, जिसे मैंने एक दिन सवाल किया, दादा ये पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि बेटा, पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, सच में बता रहा हूँ भाई साहब। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों क्या है, गौरव चौहान भैया घर में भाभी जी के साथ टीवी देख रहे थे, उसी समय जो है एक जो है उनकी पूर्व प्रेमिका जो है उनका मैसेज आ गया। तो मैसेज आया तो इन्होंने जवाब में उनको तुरंत मैसेज किया, जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। इन्होंने जवाब दिया कि तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। और चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, मगर कड़कड़ाटी ठंड में भी धोती लपेटे बैठा हूं।

0: साथियों, अब आज का रंगारंग कार्यक्रम अगले गाने के साथ ही समाप्त होता है। नाव डॉक्टर के गोज अवे। शुभ संध्या, शुभ रात्रि और शब्बा खैर।
1: खाना के खाना के खाना।